0: So direct your face toward the religion.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.

0: Indeed, Allah alone has knowledge of the hour, and sends down the rain, and knows what is in the wombs. And no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is knowing and acquainted.
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tarikhalal.com।

0: Say, O Muhammad, on the day of conquest, the
1: this
0: belief of those
1: is
0: who
1: brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
2: Khatron Ke Khiladi.
3: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyca Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav. We'll see you there.
4: Weddings, celebrations, corporate events, लागत एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
6: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
5: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
6: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
5: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
6: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
5: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
6: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. ग्रीन्स बाय डैनियो, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: मुझे इस गाने में कुछ समझ नहीं आया बट बहुत पसंद आया. आई बिलीव ही वॉज कॉलिंग मी सोनिया विच इज अ गुड थिंग. बिट ऑफ पंजाबी तड़का फॉर यू. We've got a 90s track coming up next.
1: 90s throwback plays now.
2: Like a radio.
0: Akethan, Anshul, Meenakshi, Mahesh, you got it right. You found out what the such was.

0: आज तो खुल के कह दो यारो कि जमाना है आज डिस्को का। बर्तानिया के रोशनियों के शहर मैनचेस्टर से बराह रास्त दिल की अथाह गहराइयों से क्या भला इज द टाइम टू डिस्को।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Dil leke dard de dil de gaye sahab.

0: In association with Leica Radio, Greater Manchester.
1: Bradford City Maillard 2026.
0: Sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
1: This summer, Bradford comes alive with music, culture, food and full family entertainment. At City Park and Centenary Square, bringing a Maillard back after 13 years.
0: Catch live performances from Origin, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Saika and many more artists to be announced.
1: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
0: Exclusive radio partner Leica Radio.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
3: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
5: Right, Janab. Welcome and good morning. Sonu Nigam.

0: कह दो ना भाई, कह भी दो ना। आज के भाई डायरी के पन्ने पे सोनू निगम का नाम लिखा है।
1: Like a radio.
0: Greater Manchester का प्रोग्राम बस में साबित। ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेके नाश्ते कह लें आप, ब्रेकफास्ट कह लें या मिड टाइम के लिए मिड मॉर्निंग होता है। सुबह के नाश्ते के बाद एक गौर बर्तमा जब आपको चाय की तलब लगती है, जैसे कि मेरी चाय अब ठंडी होने वाली है। ये सकप ऑफ टीवी प्रताविश दोपहर के मेरे लंच टाइम तक, थर्सडे मॉर्निंग जुमेरात की सुबह, वही जुमेरात जो बुध के बाद और जुमे से पहले आती है, हफ्ते के लास्ट शो से पहले वाली जुमेरात। जी हाँ जी, कल फ्राइडे होगा। रबी जली के बाबरकत नाम से शुरुआत करते हैं अपनी बज्म की बज्म ताबिश, जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। और आज तारीख है हमारी डायरी के पन्ने पे, आपके घर की दीवार पे वो जो कैलेंडर लगा है उसे देखिएगा। आज 30 जुलाई है और आज से ठीक 30 दिन बाद 30 अगस्त होगी। आपको पता है ना कि अगला महीना कौन सा महीना भला? अगस्त का महीना। अगस्त का महीना मेरा महीना, मेरे मुल्क का महीना है ना। बात ये कि मैं चाय थोड़ी ठंडी करके इसलिए भी पीता हूँ, मैं चाय थोड़ी ठंडी करके इसलिए भी पीता हूँ कि कहीं मेरे दिल में आए, कि कहीं मेरे दिल में, कि कहीं मेरे दिल में रहने वाले जल ना जाए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, जनाब, करेंसी के रेट हमारे यहाँ यूके में आज US डॉलर 1.32, 1.32 इंडियन रुपीज में 127.56, पाकिस्तानी रुपीज में 370.23, बांग्लादेशी टका 166.08, श्रीलंकन रुपीज 446.14 और अफगानी रुपीज 87.15।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall वालों का पैगाम धमाका खेज आपके लिए, बहुत सारी ऑफर्स के साथ साथ, लेकिन टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी। दुबई जाने की तैयारी करें, दुबई में जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे आपके लिए अच्छे अच्छे पैकेजेस निकाले हैं और कहते हैं कि एटोल प्रोटेक्टेड है और 0208574-8410 इनका नंबर है जिन्हें आप अभी कॉल कर सकते हैं।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Like a radio.
0: हाँ जी, भूल गया था उर्दू की खास खास हेडलाइन से पहले पहले हमने क्या आपको बता दें कि एक लाइव रीड पढ़ के आपको सुनानी है। द ग्रेटर मैनचेस्टर विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ SKVP वड़ा पाव एट हाइल पैलेस मैनचेस्टर आर्नल्ड सेंटर में, जिसका पोस्ट कोड है M43AB। मुलाकात कीजिए मीट रुबीना खान एंड इब्न ताबिश, हु विल बी देयर कवरिंग द इवेंट लाइव फ्रॉम 12 बजे से लेके तकरीबन 4 बजे तक, 3 बजे तक, ज्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल सैटरडे 1 अगस्त, जी हाँ, परसों आपसी आपकी मेरी और रवीना खान की मुलाकात हो सकती है यहाँ पे। देखते हैं कि कौन कौन आएगा वड़ा पाव खाने।
1: This is Like a Radio News Update.
0: राइट जी, अब खुशी के साथ साथ बहरहाल कुछ अहम खबरें दुनिया भर के आलमी अखबार की शायद सुर्खियाँ। जापान में 7.1 शिद्दत के जलजले से हलाकतें अब 30 हो गईं। इराक ने अपनी सरजमीन से सऊदी अरब पर हमलों के सबूत मांग लिए। रूस के यूक्रेन पर फजाई हमलों में 13 अफराद हलाक, जवाबी कार्रवाई में रूसी शहर भी निशाना। भारत में साबिक बस ड्राइवर के घर से 28 करोड़ रुपए और 15 किलो सोना बरामद। थाईलैंड की सस्ती शेर का झांसा देकर 3 भारतीय शेरी पताया में अपने हमवतनों के हाथों अगवा। अमरीकी नायब सदर से मुलाकात के बाद सऊदी वजीर दिफा के सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात। ایرانی حملوں میں تباہ یا شدید نقصان اٹھانے والے امریکی فوجی اثاثوں کی فہرست جاری. اور قطری ایل این جی بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گیا, ایرانی میڈیا. مصر کی بندرگاہ پر مبینہ ڈرون حملہ, امریکی گیس اسٹوریج ٹینکر نشانہ بنانے کا رپورٹ. سعودی عرب کے بحریہ احمر سے جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوشش. تو یہ تو تھی اردو کی چند خاص خاص ہیڈ لائنز. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Like a Radio.
0: Right, جس ہونے کا باب ہمارے ہیں. یو کے میں آج 1 gram گولڈ کی قیمت ہے کل کی طرح کوئی خاص رد بدل نہیں, 97 pounds 92 pence, 97 pounds 92 pence, جبکہ پاکستانی روپیز میں 1000 روپے کی کمی ہوئی ہے. آج کا ریٹ ہے 36,300 روپے, 36,300 روپیز.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Like a radio. ساؤتھ ہال ٹریول کی ایک اور اونچی اڑان دیکھیے, دبئی کی شان. فلائٹ, ہوٹل, سائٹ سینگ, ڈیزرٹ سفاری, یعنی دبئی میں سارا انتظام اور پیکج کی پرائس بے حد کم. ساؤتھ ہال ٹریول کا دعویٰ ہے کہ 24 گھنٹے کے بھیتر کہیں سے کم میں لا کے دکھائیں تو یہ ریفنڈ یا ڈفرنس واپس کر دیں گے. تو دبئی کے لیے تیار, یو ڈو دا پیکنگ, دیل ڈو دا پلاننگ. کال ساؤتھ ہال ٹریول آن 0208574 8410. At all protected.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved, that fits your life.
4: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
5: Radio partner Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation.

0: Today Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: हाँ जी, एस बी आई वालों का पैगाम, आज का रेट इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाके आप वहां से रकम पहुंचा सकते हैं या इनके मोबाइल ऐप के जरिए योनो एस बी आई मोबाइल ऐप यूके के जरिए। आज का रेट है जी इंडियन रुपीज, ये दे रहे हैं ब्रिटिश पाउंड के बदले में 126.86 रुपए।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Greater Manchester. Leica Radio.
1: जी, और अब ऐसा है कि प्रोग्राम बाकायदा आगाज हो चुका है और गाने तमाम अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों की फरमाइशें, सोनू निगम के गीत आज हम प्रोग्राम में लगाएंगे। 90s के जमाने का दौर, अक्सर जिसे मैं कहता हूँ VCR का जमाना। सोनू निगम, आज की तारीख हमारी डायरी के पन्ने पे लिखा है जी, आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई 1973 को पाकिस्तान भारत के शहर फरीदाबाद में पैदा हुए थे और बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने जो है वो गाना सीखा और फिर गाते गाते ये बड़े हो गए। तो प्रोग्राम में शामिल रहेंगे सोनू निगम के गीत और खास तौर पे आपकी पसंद के गीत और कुछ मेरी पसंद के गीत। पाकिस्तानी इंडियन सॉन्ग्स रहेंगे, लतीफे शगुफे और आज का रिडल, आज की पहेली। आज की पहेली कुछ इस तरह से है कि साहब ये बताइए, जो ना खाता है ना पीता है, बस अपनी अपनी करता है बातें करके जीता है, कौन भला? जो न खाता है न पीता है, बस अपनी अपनी करता है बातें करके जीता है।
0: इबनेट हबीश ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: जी हाँ जी, पाकिस्तानी सोनू निगम कह सकते हैं आप, अखलाक अहमद की आवाज। थर्सडे मॉर्निंग, जुमेरात की सुबह।

0: with Tabish. Across Greater Manchester, this is Leica Radio, 963 AM, 1377 AM and DAB.
1: A part of the Leica Radio Network.
0: Leica Radio.
2: जी जोक ऑफ द डे आपको सुनाना था और खबरें बिल्कुल सर पर आ गई हैं। एक बच्चे ने एक नजूमी के पास जाके पूछा कि अगर सुबह ही सुबह छींके आ जाएं तो उसका क्या मतलब है, कोई मुझे याद करता है? उसने कहा हाँ, अगर सुबह ही सुबह छींके आ जाएं तो इसका मतलब है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। फिर बच्चे ने कहा कि अगर आधी छींक आए तो आधी छींक आए तो। नजूमी ने गुस्से में झंझला के कहा कि इसका मतलब है तुम्हें याद आने तो, इसका मतलब है कि तुम्हारी याद आने लगी थी मगर उसने याद आने से पहले कह दिया दफा हो यहां से। अच्छा जी साथी दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होती है प्रोग्राम के उस पार 11 बजे के उस पार, दो गाने बैक टू बैक, उसके बाद बहुत सारी बातें।

0: Annette Tabish on the Mid-Morning Show.
1: Leica Radio.
0: Leica Radio.
2: तू दे दे बस मेरा साथ। जी हाँ, आज का हमारा आपका साथ रहेगा पूरे मजीद दो घंटे और यानी पूरे एक बजे तक। और साथ साथ आपकी हमारी बातें और गपशप हो रही है। आपकी हमारी जो है वो थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती हैं जो बातें हर बातें ऑन एयर बताने की नहीं होती, लेकिन आपके साथ हमारी चिट चैट चल रही होती है व्हाट्सएप पर। और ये वो व्हाट्सएप का नंबर है, अब यही जरिया है जिसपे आप हमें खत लिखते हैं। और कल अश्वनी शाम को प्रोग्राम कर रही थी लंदन से, तो वो यही बात कर रही थी कि व्हाट्सएप को हम अगर कहें कि खतो किताबत तो कैसा लगेगा आपको। लेकिन बहुत सारे साथियों ने कहा कि नहीं, खतो किताबत तो खतो किताबत ही होती थी, उसमें बड़ी मेहनत होती थी, कागज कलम दवात और लेटर पेड लेटर हेड लाया करते थे बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत, और उस पर शेर भी लिखा होता था कोई अच्छे से शेर व शायरी, और फिर कहीं जाके हम अपने किसी दोस्त को किसी चाहने वाले को खत लिखा करते थे। बारल जी अपने अपने विचार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। समीर मिर्ची वाला ने सबको सलाम कहा है, थैंक यू वेरी मच। हमारे रिडल का जवाब आ रहा है धीरे धीरे धीरे, और बस इतना सा हमने पूछा था कि जो ना खाता है ना पीता है, बस अपनी अपनी करता है और बातें करके जीता है। तो वारिंगटन से फरजाना हमारी बहन ने लिखा कि ताबिश भाई, घड़ी या आग या तूफान। ओह, गजाला जी भी रॉकजल से कहती हैं शायद ताबिश भाई रेडियो, सहर ने कहा टेलीफोन और जरीन ने कहा कैमरा।
0: ये है
1: लाइका रेडियो।
0: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
0: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
0: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Main nikla o gatti leke aaye ho main.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, Panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
9: Royale Festival CIC presents,
7: in association with Leica Radio Greater Manchester,
9: Bradford City Mela 2026.
7: Sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
9: This summer, Bradford comes alive with music, culture, food and full family entertainment at City Park and Centenary Square, bringing a Mela back after 13 years.
7: Catch live performances from Origin, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Saika and many more. more artists to be announced.
9: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio.
0: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
10: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
11: This is Alka Yagnik.
12: Hey everyone, this is Arman Malik here.
13: Hi guys, this is Taha Shabadusha.
14: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
15: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Laika Radio.
16: Laika Radio.
17: A Laika Radio classic. Plays now.

0: वही बात है अभिष, कहाँ कितनी दूर ले गए तुम यार। 1949 दिलीप कुमार की अंदाज और मुकेश की मधुर आवाज, शमीम बानो बेगानी और कजोरी जी आपके नाम हुआ ये गीत। और गुलाम अली भाई हॉलीडे पे हैं, हमें सुन रहे हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। बहुत देर पहले आपने हमें मैसेज किया था, गुलाम अली भाई मोरक्को में एक जैसा वक्त और एक जैसा मौसम शायद हो सकता है हमारी तरह आपके यहाँ का भी मौसम, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गर्म होगा मुझे पता है। मोरक्को में जीते रहिए और साथ निभाते रहिए। है, कहते हैं साहब के मगरूर हमें कहती है तो कहती रहे दुनिया, मगरूर हमें कहती है तो कहती रहे दुनिया, हम मुड़ के किसी शख्स को देखा नहीं करते। मगरूर हमें कहती है तो कहती रहे दुनिया, पर हम लोग तो मेनोश हैं, बदनाम हैं सागर, हम लोग तो मेहोश हैं, मेनोश हैं और बदनाम हैं सागर। पाकीज़ा हैं जो लोग वो क्या क्या नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। बरी में चंदा हमारे साथ है तो बरी ही में हमारे साथ निभा रही है लैला।
1: दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर फॉर्मली नोन एज एशियन साउंड रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Hand currency rate US dollar 1.32, Indian rupees mein 127 rupees 56 paise, Bangladeshi taka 166 taka 8 paise aur Pakistani rupees 370 rupees 23 paise, श्रीलंकन रुपीज 446 रुपए 14 पैसे और अफगानी रुपीज 87 रुपए 15 पैसे।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: Yeah, just sunne ka bhav, humare yahan UK mein aaj 1 gram gold ki qeemat ho gayi 97 pound 92 pence 97.92 पेनिया। पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज है 36,300 रुपए 36,300 रुपीस।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
2: ये है लाइका रेडियो।
0: जुमेरात की सुबह और 11 बजकर हो गए 26 मिनट। ये पैगाम एनएचएस की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामेईन के लिए है। बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारी से बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से ज्यादा जानें बचाने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की मुतअद्दिद संगीन बीमारियां अस्पताल में

0: Metro podcast update.
1: Black Radio के podcast update को आपको बता दें कि इस हफ्ते जो है दीप राजा जो है जो इसे host कर रहे हैं और इसके लिए जो है तावन किया है ये हैं from समीरा ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड वाले और ये बात कर रहे हैं रिनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है ये बात कर रहे हैं, जरा सुनिएगा।
0: Mike extra is here. Mike Radio.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
2: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
6: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, Auto protected.

0: ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertised on Like a Radio Network. Offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales@likeamedia.co.uk. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio Mobile App. Listen live and listen back to your favorite show.
5: और अब सज्जाद अली की आवाज का वो सॉन्ग जिसमें परदेसियों के नाम बहुत सारी बातें हैं।

0: Leica Radio.
1: जो भी कोई जाए परदेश ये बता के जाए कहते हैं कि एक तबीब के मुताबिक आपका मनपसंद शख्स आपके पास से भी गुजर जाए एक तबीब के मुताबिक आपका मनपसंद शख्स अगर आपके करीब से भी गुजर जाए तो वो आपके दिल की धड़कन बेतरतीब करने की सलाहियत रखता है ना कुछ ऐसी बात है। शुक्रिया लाहौर में ताबीर हमारे साथ हैं, जापानी गुड़िया अफशा हमारे साथ हैं और शमा आप हमारे साथ हैं कराची में। फरीद भाई दोनों शुक्रिया आपका, आज के हमारे गीत आपके पसंद के मुताबिक होंगे। पहलवान सज्जाद भाई मलेका जी आपका शुक्रिया। साजिदा सोमरो ने हमारे रिडल का जवाब दिया है सीक्रेट। अच्छा जी, हमने तो बस ये पूछा है कि जो ना खाता है ना पीता है बस अपनी अपनी करता है और बातें करके जीता है।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: ऑलराइट जी, SBI वालों का पैगाम एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज के रेट दे रहे हैं ये 126 रुपए 52 पैसे।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
1: जी Leica Radio Greater Manchester, मौसम बदल रहा है, कहीं तुम ना बदल जाना। कॉल्डम से आसिम आप शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, आज देर से आए हैं आप, कोई बात नहीं, आपको लगता है बुलाना पड़ता है। हमजा वालेकुम सलाम, हमजा ने हमें सलाम कहा था काफी देर पहले। अबरार वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मोइन जी लीम में हमारे साथ हैं, लीम में मोइन जी, शुक्रिया मोइन जी। ताहिर जावेद नेदरलैंड में और लंदन में योगेश भाई और अतीका जी आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इतना ज्यादा इतनी तेज खुशबुओं वाला फूलों का गुलदस्ता अच्छी बात है। जाहिद अब्बास, साजिद सुमरो, शकील भाई, वल्ली भाई और खुशबू हमारे साथ हैं ये प्रेस्टन में, मैनचेस्टर में घूमते फिरते हमारे साथ निभाएंगे। अरशद मुगल भाई और आज हमारे यहाँ काम पर हैं खालिद लंगड़ियाल भाई, आज हमारे साथ हैं जी, कहते हैं आज मैं आपके शहर में हूँ। नौशाद अली भाई हमारे साथ हैं जी बर्ले में, खालिद वहीद भाई वहाँ होते हैं, खालिद महमूद साहब होते हैं। उमर ने कहा सलाम ताबिश भाई, वालेकुम सलाम, जीते रहिए। रुखसान अफजल हमारे साथ हैं जी, गजाला जी भी हमारे साथ हैं, अकबर हमारे साथ हैं, नसीर भट्टी हमारे साथ हैं जी लेसबन में, जमशेद चौधरी भाई, नवाज भाई ब्लैकपूल में हैं और अय्यूबी भाई उठ गए हैं और राजा अतीक भाई और रोजडेल में हमारे साथ हैं जी आसिया।

0: Radio. अनुराधा पौडवाल की आवाज और फिल्म का नाम था साथी। फरीद भाई ने हमें बताया कि ये इस फिल्म में हमारे क्रिकेटर हमारे हीरो हुआ करते थे, पाकिस्तानी, याद होगा आपको, मोहसिन खान इस फिल्म के हीरो थे भाई। हो सकता है मैंने शायद ये फिल्म नहीं देखी थी। मोहसिन खान, बहरहाल जी, गा रही थी अनुराधा पौडवाल और हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। गाने के शब्द बहुत अच्छे थे, हुई ना हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया तो साफी कोई भूला याद आया। इस गाने को नाम करेंगे जी लेला के। लेला हमें सुननी है बरी में। कहते हैं साहब कि टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से लगाई हुई उम्मीद।
1: Laika Radio. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV. Khatron Ke.

मैं गाऊं, सोनू निगम से कहता हूं तुम चुप हो जाओ, मैं गाता हूं। सोनू निगम की अपनी जाती एल्बम से ही गाना था, गैर फिल्मी गाना, फिल्म एल्बम का नाम था दीवाना।

0: दीवानों जैसा हाल है और अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। ला ला ला ला ला ला।
1: Like a radio. Joke of the day with Tabish.
0: Like a... हाँ जी, joke of the day with Tabish. एक लड़की ने एक लड़के से कहा, दोनों साथ बैठे थे, ईद का मौका था। लड़की ने कहा, मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा ईद का गिफ्ट कहाँ है। लड़का बोला, वो देखो वो सुर्ख रंग की कार देख रही हो। लड़की ने कहा, अल्लाह, खुश होते हुए कहा, अल्लाह जी कितनी खूबसूरत है। लड़के ने कहा, बिल्कुल सेम उसी रंग की पोनी लाया हूँ। राइट जनाब, तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं उनका भी शुक्रिया, और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव के दौरान प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मौसम बदल रहा है और कहीं तुम न बदल जाना। किसी ने मुझे लिखा है चीटर। मीरपुर आजाद कश्मीर में हमारी एक छोटी सी बहना है और वो हमें मैसेज करती हैं और यहाँ किसी को याद करती हैं बहुत दिल से और उसका इंतजार करती हैं बड़े दिल से। मैंने कल ये परसों अपने प्रोग्राम में कहा था, अल इंतजार वल शिद्दतुल मौत। तो बहरहाल इतना भी इंतजार किसी को नहीं करवाना चाहिए कि कोई इंतजार करते करते करते करते।
1: Like a radio 90s, like a radio Punjabi, like a gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Like a radio.
2: This is Like a Radio.
1: Like a Radio.
2: Greater Manchester.

0: एक था लड़का और एक थी लड़की दीवानी। लड़की दीवानी। दोनों मिलजुल के रहते थे, दोनों में बहुत प्यार था। फिर बनी उनकी एक कहानी। अच्छा जी, कहानी कुछ यूं थी कि एक था चुड़ा एक थी चुड़िया। जब बात कहानी की चली है तो चलें कहानी सुन लें। मेरी अम्मी जान बचपन में ये कहानी मुझे सुनाया करती थी, चलें आज आपके साथ शेयर करते। मेरी अम्मी की कहानी मेरी जवानी। एक चुड़ा था एक चुड़िया थी, दोनों मिलजुल कर रहते थे, दोनों में बहुत प्यार था। दोनों मिलकर घूमते थे और दोनों मिलकर खाते थे और दोनों मिलकर पकाते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। वो रोजाना एक काम करते थे, चुड़ा लाता था चावल का दाना और चुड़िया लाती थी दाल का दाना, फिर दाल चावल बना के खाया करते थे। हाँ तो फिर ये हुआ कि दोनों में एक दिन लड़ाई हो गई। दोनों ने कहा कि अब हम मिलकर नहीं ना पकाएंगे ना खाएंगे। तो चुड़िया ने अपनी दाल खुद बना ली और चुड़े ने अपने चावल से, चावल के दाने से चावल खुद बना लिया। दोनों ने अलग अलग होकर खाया। दोनों ने फिर अलग अलग खाया, एक ने सिर्फ दाल खाई, एक ने सिर्फ चावल खाए, और फिर दोनों का पेट खराब हो गया। ये है
1: Like Her Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
1: London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.

0: जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जमशेद चौधरी भाई, खालिद महमूद भाई, गुलाम अली भाई, मोरक्को में, आसिम ओल्डम में, लेला बरी में, रहला जी आप, और कराची में फरीद हुसैन भाई, आप सबको ये गजल बहुत पसंद आई। कहते हैं साहब, जिंदगी में एक ना एक बार ऐसी होती है, जिंदगी में एक ना एक बार ऐसी होती है जिसके बाद इंसान को कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। जिंदगी में कभी ना कभी एक हार ऐसी होती है, मैंने गलत कह दिया, कि जिसके बाद इंसान को फिर कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। और मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती साहब, मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाले उसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक बात है, जो एक बात बाकी है जो जिसपे वो सारा जान छोड़ देते हैं। मोहब्बत में ऐसे जुटते हैं कि फिर सारा जान छोड़ देते हैं, क्योंकि क्योंकि फिर ये एक ही शख्स, ये वो एक ही शख्स होता है जो उनकी जिंदगी का सारा जहान, सारी कायनात बन जाता है।
1: Ibn Attabish on the Mid Morning Show.
2: Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency के रेट हमारे यहाँ यूके में आज US डॉलर 1.32 का 1.32, इंडियन रुपीज में 127.56, पाकिस्तानी रुपीज में 370.23, बांग्लादेशी टका 166.08, श्रीलंकन रुपीज 446.14 और अफगानी रुपीज 87.15 का।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester.
2: LIKA Radio.
0: हाँ जी, साउथ हॉल वालों का पैगाम एक बार फिर से आपको बता दें कि दुबई जाने के लिए तैयारी पकड़ लें, बहुत सारी मराहत दे रहे हैं, हालात बेहतर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, और फाइव स्टार होटल में क्याम और न जाने क्या क्या, लेकिन ये इन सब पे शर्तें लागू होंगी, यानी टीज एंड सीज अप्लाई, एटोल से प्रोटेक्टेड है, और नंबर इनका है 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 97 pounds 92 pence, 97 pounds 92 pence पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज 36,300 rupees, 36,300 रुपीज पर ग्राम।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com.
0: रेडियो, हाँ जी लाइक रेडियो से अब दोपहर हो गई, जमेरात की दोपहर, और 12:27। ये पैगाम मैनेजर्स की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामीन के लिए है। बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन्स आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ़ फराहम करती हैं, और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से जायद जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की मुतअद्दिद संगीन बीमारियां अस्पताल में दाखिले और बाज़ोकात जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां

0: हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है। NHS की जानिब से फराम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन्स दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और रिकॉर्ड से वाजे है कि इन वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगाई जाए, और अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने GP से राब्ता करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सके। क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन्स बर वक्त मुकम्मल हैं, ये जानने के लिए अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपने GP सर्जरी से राबता करें। और मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination। अभी कॉल कीजिए।
1: ये है
2: लाइका रेडियो। यू ट्राइड मुंबई फेवरेट स्ट्रीट फूड, मीट द आइकॉनिक SKVP वड़ा पाव, कमिंग टू मैनचेस्टर। SKVP वड़ा पाव, वन ऑफ द UK's फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन स्ट्रीट फूड ब्रांड्स, इज ओपनिंग इट्स न्यू स्टोर ऑन 1st August एट R1 हिल प्लेस, मैनचेस्टर आर्नडेल, M4 3AB। जॉइन द लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर टीम फॉर द ग्रैंड ओपनिंग एंड बी अमंग द फर्स्ट टू टेस्ट द ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ मुंबई। SKVP वड़ा पाव, वी'ल सी यू देयर।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सफ्टोल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टोल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सफ्टोल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
7: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 Stockport Road, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
11: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
10: So where do we find something like that now?
11: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
12: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk.
0: जी हाँ, और अब रणबीर कपूर इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक।

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK brand.
1: SBI वालों का पैगाम इंडिया भेज दिए, पैसे भेज दीजिए, रोज कहता हूँ भेज दीजिए, बहुत सारी मराहत, बहुत सारी चीजें देते हैं अगर आप उनको इनकी मोबाइल ऐप के जरिए भेजेंगे तो, वरना खैर आप इनकी किसी ब्रांच में जाएं, वहां जाके भी रकम दे सकते हैं वर्बली, आप जैसे जाके कैश में दे दें या चेक दे दें या अपनी बैंक डिटेल दे दें या ऑनलाइन, या फिर सबसे बेहतरीन जरिया इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें योनो SBI मोबाइल ऐप UK इसके जरिए, और आज की रकम जो भेज रही है आज का रेट है 126 रुपए तकरीबन, कोई 40-42 पैसे।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Greater Manchester. Leica Radio.
1: कहते हैं साहब कि बहुत मिलेंगे तुझे, बहुत मिलेंगे तुझे जिंदगी में चाहने वाले। Once again, good afternoon. आज की गजल आपको कैसी लगी? बहुत सारे साथियों को इतनी अच्छी लगी, और वाकई ये जगजीत सिंह की उन गजलों में से एक, ये वो गजल है जो जितनी बार भी सुना जाए हर एक के दिल की आवाज होती है, और एक ऐसी कहानी है हर एक की जिंदगी में कि जो इनकी इस गजल के कुछ शब्द, कुछ शेर ऐसे हैं जो हर एक की जिंदगी में आते हैं। आपको बता दूंगा, मोइना जी ने, हमारी फेसबुक की फ्रेंड है मोइना जी, कहती हैं ताबिश जाहिद जफर तुम्हें याद नहीं आए? अरे क्यों नहीं यार, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। जाहिद भाई यहाँ इसी मंच पे, इसी सीट पे बैठा करते थे, कभी हम साथ मिलके भी शो किया करते थे, लेकिन जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की, वो चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। उनके लिए दुआ कीजिएगा भाई सब लोग। मोइना जी आपने याद दिलाया तो फिर क्या बात है। अच्छा जी, राहेला जी लिखती हैं कि बहुत मिलेंगे तुझे जिंदगी में चाहने वाले, जाओ जाओ अगर कोई हमसा मिले तो जिंदगी पे नाज करना। हाय हाय हाय, कोई हमसा मिले तो जिंदगी पे नाज करना, और ख्वाहिशें रुगबतें तमन्नाएं मिलाने तलब, ख्वाहिशें रुगबतें तमन्नाएं मिलाने तलब, और कुछ ख्वाब थे तदफीन किए जाते हैं, मांगे जाते हैं मुरादों से हमारे जैसे, ना मुरादों से तो हम छीन लिए जाते हैं। मोहम्मद अशरफ भाई आथरटन में होते हैं हमारे साथ, और सज्जाद अली का परदेस का जो सॉन्ग हमने लगाया था उससे रिलेटेड उन्हें एक मैडम नूरजहां का गाना याद आया था। भाई परदेस से मुताल्लिक कोई बात हो रही है, जरा सुनिएगा आप, अगर आपको शायद अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ये गाना।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: This is Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV.
3: Khatron Ke Khiladi.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410 दैट्स 8574 8410
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482 511 603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस है ना
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
8: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
1: ब्रैडफोर्ड मेला 1st एंड 2nd ऑफ अगस्त एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio. Up next, Ravina Khan with the magazine show. Leica Radio, Greater Manchester. Ibanet Tabish on the mid-morning show. Leica.

0: कुछ पता है,
1: तुम्हें भी सब कुछ पता है।
0: क्या मुझे
1: अब तुम छुपाना चाहो तो छुपा लो, जमाने को पता है।
0: छुपा
1: अब अगर मुझे रोक सको तो रोक लो, मुझे रोकने का कोई बहाना बना लेना
0: है।
1: मुझे रोकने का तुम अब कोई बहाना बना लेना। मैं जाने की जिद करूं, मैं जाने की जिद करूं तो तुम चाय बना लेना।
2: Even and Tubbies, rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
1: जी अब आपसे विदा होने का वक्त आ गया। अलविदाई कलिमात आने शुरू हो जाते हैं। लाहौर से लेके, कराची से लेके, लेस्बन से लेके, न्यूयॉर्क से लेके, लंदन में योगेश भाई से लेके, सैलफर्ड में खजूरी जी से लेके, मैनचेस्टर में अतीका जी से लेके, सब कहते हैं ताबिश तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना। अरे बड़ा कुछ कहना है, दिल नहीं होंदा। कभी कभी तो इतनी मीठी जबान है पंजाबी, मुझे क्या करूं। मैं कुछ करूंगा, मैं एकदम पूरा पंजाबी शो करूंगा, चाहे फिर मेरा आप लोग कुछ भी हशर करें। वो क्या कहते हैं, पंजाबी में इतनी मीठी जबान है। आसिम ने मुझे लिख के भेजा, साबिश भाई पंजाबी इतनी मीठी जबान है, अगर किसी को पागल कहना हो ना, पागल कहना हो तो बस इतना कह दो यार तू भी बड़ा बादशाह बंदा है यार। अच्छा मतलब वो समझ जाएगा फिर, चलिए ठीक है। अच्छा जी, आज सनू निगम का बर्थडे था, हमारी डायरी के पन्ने पे उनका नाम लिखा था भाई। अब आज के दिन 30 जुलाई 1973 को वो फरीदाबाद का भारत में पैदा हुए थे, और मेरे और आपके चंद पसंदीदा गुलकारों में उनकी आवाज उनका नाम आता है। तो अब हाँ, आज का रिडल क्या था भाई। हमने आपसे पूछा था कि भाई जो ना खाता है ना पीता है, बस अपनी अपनी करता है और बातें करके जीता है। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए थे शुरू शुरू में, जब वो समझे नहीं थे। जैसे किसी ने कहा घड़ी वॉच, किसी ने कहा आग, किसी ने कहा तूफान, किसी ने कहा रेडियो, किसी ने कहा टेलीफोन, किसी ने कहा कैमरा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई ये रेडियो हो सकता है ताबिश भाई, रेडियो। जबकि मैं अगर ये जवाब दूं
2: पंजाबी हिट्स ऑफ द आवर,
1: एक मिनट सोनू निगम अब पंजाबी सॉन्ग आपको लेके जाएगा 1 बजे की खबरों की जाने। स्मार्टफोन, जी हाँ, आज का मोबाइल फोन भी जो है अपनी अपनी करता है। मेरे बाद यहाँ रुबीना खान,
3: बड़ा कुछ कहना है,
1: कह दो जो दिल में है आज कह दो, जवाब तो मैंने कल आके देना है। फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट में कल हफ्ते का लास्ट मिड मॉर्निंग शो होगा। कह दो फिल्म का नाम यारियां। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्लीज, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पी अमान अल्लाह।

0: Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
1: मैगजीन शो में आपने दो बैक टू बैक सॉन्ग सुने और उम्मीद करते हैं आपने इनको जरूर एंजॉय किया होगा। पहला गीत जो आपने सुना वो भूत बंगला 2026 की जो फिल्म थी उससे था और इंटरेस्टिंग सॉन्ग था। ऑल इज वेल बहुत ही जबरदस्त आइकॉनिक फिल्म थ्री एडियट जो कि बनी थी 2009 में, उससे गीत था ये ऑल इज वेल। ओ भैया ऑल इज वेल, सही है, अपने आप को यही तो समझाना चाहिए कि एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। सो वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है और ज्यादा ठीक ठाक इसलिए है कि आज 30 जुलाई के हवाले से जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वहां पर फ्रेंडशिप का डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और इसको तकरीबन आज से आप हिसाब को जोड़ लें 2011 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने सोचा कि फ्रेंडशिप जो है वो दुनिया में पीस ला सकती है, चाहे वो दो लोगों के दरमियान हो, कंट्रीज के दरमियान हो, या कल्चरल जो लोग मिल के बैठते हैं उनके दरमियान हो, यानी कल्चर वाइज हर चीज जो मिलकर बैठती है और बात करती है वो ब्रिज बनाती है अमंग टू डिफरेंट पीपल, और ये पीस हार्मनी और लव का बाइस बनता है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप टुडे, सो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। इसी नोट पर आपको मैं ब्रेक की तरफ लेके जाती हूँ, और जो हमने कल बात की थी कि अगर आपको कोई गीत अच्छा लगता है तो वेंसडे एंड थर्सडे आप मुझे बता सकते हैं, कल आपने कुछ गीत मुझे बताए वो मैं आज प्ले करूंगी विद योर वॉइस नोट। यस ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड टू लाइक अ रेडियो।
0: द मैगजीन शो विद रुबीना खान।
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner Leica Radio.
8: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: Ace Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Advertise your service here. 01612508222. Laika Radio, Greater Manchester.
2: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है. दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो. विजिट कीजिए tarikhalal.com.

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Maxine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर और द मैगजीन शो में आपने दिल गलती कर बैठा है ब्यूटीफुल ट्रैक जुबिन नौटियाल की आवाज में सुना. और जो वहां तक बात है कि आपकी फरमाइश के गीत, तो आपकी फरमाइश के गीत जरूर प्ले होंगे और आपको एक अलर्ट मैसेज भी मिल जाएगा हमारी टीम की जानिब से. जब आपका गाना प्ले होगा तो आपको कुछ ही देर पहले एक मैसेज मिलेगा कि योर सॉन्ग विल बी प्लेड एट फला फला टाइम. सो इससे ये होगा कि आप अपने गाने को सुन सकेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ कि गो कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और सुनते रहते हैं रेडियो, लेकिन ऑब्वियसली इंसान की तवज्जो, काम वगैरह सब कुछ होता है, तो उसके साथ अच्छा होगा कि अगर हमारी नाइसली हमारी जो टीम है वो आपको एक मैसेज कर दे ताकि आपका ध्यान अपने गीत की तरफ आ जाए. सो ये थी आपके लिए एक अच्छी बात और बहुत सी अच्छी बातें हैं. आर इन द वे.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So, आज करेंसी एक्सचेंज रेट की जो अपडेट है, US डॉलर मिलेगा आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में 1.32, इंडियन रुपीस 127.56, पाकिस्तानी रुपीस 370.23, बांग्लादेशी टका 166.08, श्रीलंकन रुपीस 446.14, अफगानी 87.15 अफगानीज.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. A Leica Radio Classic plays now.

0: Radio.
1: जी हाँ, लाइका रेडियो और बहुत से मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आपको गीत तो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन अभी मोहम्मद अशरफ आपने कहा कि मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप की जानिब से, यानी आपकी टीम की जानिब से हमें मैसेज आएगा अगर हम कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करेंगे और वो पूरा हो रहा होगा तो आपको, ताकि आप सुन लें। ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि आप जब इतनी मेहनत करते हैं तो हमारी तरफ से भी एफर्ट होनी ही चाहिए। तो एफर्ट की मिसाल मैं आपको इस तरह से देने जा रही हूँ कि हमें जो मैसेज एक मिला है उस मैसेज को मैं यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करती हूँ। ऑब्वियसली ये वॉइस नोट है तो इसकी क्वालिटी और जो है वो ऐसी तो नहीं हो सकती जैसे कि रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन फिर भी आपकी एफर्ट है और हम इसको शामिल कर रहे हैं। तो 1, 2, 3।
2: अस्सलाम वालेकुम रबीना खान, मेरी पसंद का गाना रफी की आवाज में है, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार। अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है ये वॉइस मैसेज का, वैसे आपका प्रोग्राम वेरी नाइस होते हैं सारे, मुझे बहुत गीत पसंद है आप जो पेश करती हैं और आपकी बातें भी, आई रियली लाइक योर प्रोग्राम।
1: सर जी ये तो मैसेज था और इसमें अगर सही तरीके से जा सका है ये और आप सुन पाए हैं तो आपने गीत भी फरमाइश किया है और प्रोग्राम की कुछ थोड़ी तारीफ भी की है जिसके लिए वेरी काइंड ऑफ यू। और अब आपकी आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो हमारे पास है, हम इसको प्ले करते हैं।
0: The Leica Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heat wave.

0: Like a radio.
1: आपके मैसेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और जेसी अगर मैं कहूँ जमशेद चौधरी जेसी ज्यादा आसान रहेगा. एनीवे आपने कहाँ दुख है इस गीत को सुनकर. आप जैसे लोग हैं ना जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदगी को खूबसूरत बनाने की. बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं. लेकिन मिस्टर जेसी आप ये भी तो याद करें ये भी तो नजर में रखें कि कितने लोग ऐसे नहीं भी हैं. बहरहाल इस गीत को छोड़कर इसकी बात नहीं है ये एक बहुत ही डिबेटेबल बात है. सो एनीवे अपने हिस्से का जो काम है जिसको उर्फ आम में कहते हैं अपने हिस्से की शमा जलाते जाइए रोशनी होती चली जाएगी. ऐसा ही है ना शायराना अंदाज अगर हम अपनाएं. सो एनीवेज भाव ताव की तरफ चलते हैं रेट देखते हैं सोने का कितना हो गया आज.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: So जी आज 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 97 pounds 92 pence.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482 511603. Visit monosmarkets.com.

0: Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: और अभी जो आवाज आप सुनेंगे पाकिस्तानी ट्रैक में नसीब उलाल की आवाज है पाया चूड़िया मैं आज जैसा म्यूजिक है वैसी ही रवानी अभी आने वाली है गाने में बस सुनते जाइए

0: सो नसीबुलाल की आवाज ने बहुत से लोगों को खुश किया है। पंजाबी का सॉन्ग, ट्रेडिशनल सॉन्ग, बहुत से मैसेज मिले हैं। सबके नाम बारी बारी मैं जरूर लूंगी, लेकिन इस वक्त एक मैसेज है जिसमें कहा गया है कि मैं आलू गोश्त पका रही हूँ और साथ डांस कर रही हूँ किचन में, मजा ही आ गया। शुक्रिया सारा खान।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में 127.56 इंडियन रुपीस मिलेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
3: खतरों के खिलाड़ी।
4: हैव यू ट्राइड मुंबई'स फेवरेट स्ट्रीट फूड? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyco Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav. We'll see you there.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Brantford City Mela with Leica Radio Network. This weekend at City Park and Centenary Square, Brantford. Free entry. News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.
11: Hi, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए।

0: Breaker Radio.
1: तो बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने सुने और जुबिन नौटियाल की आवाज में पहला गीत था रांझे नोहीर और फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं 2025 की फिल्म और दिल तेरी दीवानगी में खो गया है किस्मत फिल्म का गीत 2004 की फिल्म से आपने गीत सुना और आपके मैसेजेस जो हैं मुझे मिल रहे हैं 07703403020 पर कुछ लोग सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो मलिका आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा है एंड वेलकम कहा बहुत शुक्रिया एसपी सज्जाद आपने भी मैसेज किया है और आप सुन रहे हैं अस्सलाम वालेकुम का मैसेज है फरजाना नसीब आपकी जानिब से सोजी वालेकुम अस्सलाम और फरीद हुसैन आपका मैसेज है और आपने कोई लतीफा लिखकर भेजा है गालबन मोहम्मद अशरफ आपने अच्छा सा मैसेज किया है और आपको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम और यकीनन आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वॉइस नोट भेजिए और मैं आपकी रिक्वेस्ट गुड टाइम में ये नहीं कहती कि स्ट्रेट अवे प्ले हो जाएगी लेकिन ज़रूर और जमशेद चौधरी आपका मैसेज भी शामिल हुआ एंड खान आप हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच और फिर जी कमरान आपने ज्वाइन किया है आपका शुक्रिया आपने भी एक गीत रिक्वेस्ट किया बहुत अच्छा गीत है रुखसाना अफजल आप ने भी इमोजी के जरिए हेलो हाय वाला मैसेज किया है सो गुड आफ्टरनून लिखा बड़ी मेहरबानी जी

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।

हम चुकी सुनेंगे फिल्म सड़क से 1991 की फिल्म। आमिर मिर्जा ने बोल्टन से मैसेज किया है, कोई अनुराधा का गीत सुनना चाह रहे हैं तो लीजिए अनुराधा पुडवाल की आवाज़ सभी सुनने वालों के साथ साथ खासतौर पर।

0: क्या ही गीत है और क्या ही कहा जाए इसके बारे में। सिर्फ ये मैं कह सकती हूँ कि अभी मैं एक और फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ। लेकिन याद रखिए कि मैं अलर्ट पहले भिजवा रही हूँ, हमारी टीम बहुत हेल्पफुल है आज, और आप जान जाते हैं कि आपका जो सॉन्ग है, जो फरमाइशी सॉन्ग है, वो आने वाला है। सजी लाइक रेडियो, और इस वक्त हम आपको एक वॉइस नोट सुनवाएंगे, आई होप के आप सुने।
1: अस्सलाम वालेकुम रुबीना, दिस इज मोइना फ्रॉम लेम। माय फेवरेट सॉन्ग इज तुम चांद देख लेना, तुम्हें हम नजर आएंगे।
0: क्या अच्छा, थैंक यू जी, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, तुम चांद देख लेना।
2: LYCA, this is Laika.

0: ये बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जो हम सुनते हैं, पंजाबी हो उर्दू हो, मतलब सिंगर है।
1: The Magazine Show with Robina Khan.
0: और कहीं इन्हीं गीतों को आप गाने की हिम्मत करें या गाएं तो आप देखिए कि क्या हशर होता है इन गीतों का। तो बहरहाल जो गाने वाला है उसका काम है, रियाजत है, बल्कि जितने भी लोग होते हैं गायकी की दुनिया से, म्यूजिक की दुनिया से और इवन शायरी की दुनिया से, जब तक प्रैक्टिस नहीं वो रोज करते तो बात बनती नहीं है। तो उसके बाद कहीं जाकर ये होता है कि आप कुछ गा सकते हैं या गुनगुना सकते हैं। तो क्या ख्याल है, कुछ प्रैक्टिस रोज के रोज अगर करें तो कहीं तो पहुंच ही जाएगा हमारा काफिला भी। क्या ख्याल है कि अगर कैसे हो सकता है कि बंदा रोज ट्राई मारे तो उसको गाना ना आए। चले मैडम नूरजहां की तरह का नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो गाना आना ही चाहिए ना, अक्सर लोग कह ही लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ एक लाइव म्यूजिक सुनने का, तो जो साहब तबले पे थे वो कहते हैं अगर मैं 2 घंटे रोज तबला ना बजाऊं तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊं। तो एवरी सिंगल डे, यानी कोई भी म्यूजिक की फॉर्म हो, ये काम आपको करना ही पड़ता है। तो चलिए, हमारे लोग हमारे लिए बहुत से दूसरे लोग कर रहे हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको 127.56 इंडियन रुपीज मिलेंगे 1 pound के एक्सचेंज में। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
3: Khatron Ke Khiladi.
4: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyco Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav. We'll see you there.
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0 to 01484-9630-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, Panto fun for all the family.
11: Radio partner, Leica Radio.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
13: Leica Radio Network.
0: और ये मैसेज है
14: बहुत दिनों के बाद ऐसे बात कर रहे हैं कोई वक्त तक जब

0: Magazine Show with Robina Khan. Like a Radio.
1: तो बैक टू बैक सॉन्ग्स आप सुन चुके. पहला गीत सुई धागा फिल्म से था और सुखविंदर सिंह एंड सलमान अली की आवाज में थे. सब बढ़िया है. क्या जबरदस्त स्टार्ट है और क्या एंडिंग भी यही होनी चाहिए. सुबह भी इससे होनी चाहिए कि सब बढ़िया है और एंडिंग यानी रात के वक्त भी सब बढ़िया ही होना चाहिए. एक सोच होती है ना. और दूसरा सॉन्ग जो था वो पिकलिपम, बहरहाल अच्छा गीत था और बेबी जॉन फिल्म से इसको हमने लिया. सो गीत हो गए. अभी इस आवर में बहुत सी बातें होंगी आपके साथ और जबरदस्त हमारी प्लेलिस्ट इज लाइन अप.
0: द मैगजीन शो विद रुबीना खान.
2: By Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vadapal coming to Manchester. SKVP Vadapal, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vadapal. We'll see you there.
2: London, are you ready? Raghav and presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
9: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
0: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner. Leica Radio.
10: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे Leica Radio मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए. Leica Radio ग्रेटर मैनचेस्टर. ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822. दैट इज 0161250822. Leica Radio ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी.
0: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: जी हाँ, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. और आपको मालूम है कि ये वक्त है आपके लिए कोट ऑफ द डे का.
0: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.
1: चलिए ऐसा करते हैं कि कोट ऑफ द डे को थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं. और अभी ये बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ. अंदाज 1971, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जुनून अली असमत की आवाज़ है.

0: Quote of the day with Robina Khan.
1: जी, यहाँ पर है कोट ऑफ द डे और आज की कोट एक प्रोवर्ब है जो कि जर्मन कहावत है ये, और इसमें ये कहा जा रहा है कि हर चीज की उम्र होती है, हर चीज की एक खास एज होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में। और इसमें उन्होंने मिसाल दी है कि एक बाड़ यानी एक फेंस जो है हम घरों में लगाते हैं, उसकी उम्र 3 साल है फर्ज करें। एक डॉग जो आपका पेट है या कोई भी डॉग, उसकी उम्र 3 साल है, उसकी उम्र जो है वो 3 बाड़ों तक है। अब उन्होंने 3 साल की जो एक बाड़ की वैल्यू लगाई है, उसके बाद हर चीज को नापा है उसी तरह से जैसा कि उसकी एज है। यानी एक फेंस की एज अगर 3 साल है, एक डॉग जो है उसकी एज है 3 फेंसेस की तरह, और फिर एक घोड़ा जो है वो उसकी 9 फेंसेस की एज है, और जो इंसान है उसकी जो एज है वो 3 घोड़ों की सी है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक जो फेंस है वो 3 साल तक चलती है, उसके बाद खराब हो जाती है। एक जो डॉग है उसकी उम्र नॉर्मली 9 इयर्स होती है, हॉर्स की उम्र 27 इयर्स होती है, एक इंसान की एवरेज एज पहले तो कम थी लेकिन अब होते होते फॉर एग्जाम्पल 81 इयर्स है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक 3 3 3 को उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट किया है। तो कहने का मकसद ये है इस कहावत में, इस प्रोवर्ब में, कि हर चीज की एक उम्र होती है। इसका मतलब यह है कि हमें इस आरजी जिंदगी को समझना चाहिए कि जितना भी कुछ हो जाए ये एक दिन खत्म होनी ही होनी है, और वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करता है, तो ये तो जरूर होना है। अब ये है कि आप इसको कैसे जीते हैं और क्या करते हैं, ये इंसान जरूर कर सकता है कि उसको ऐसे जिए, ऐसे कामों में लगाए कि उसको एहसास हो कि हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए या दूसरों के लिए कर रहा है, क्योंकि जिंदगी हमारी हिसाब से चलती है अगर हम उसमें रोज कुछ करें। ख्वाबों को मत टालें, ये इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, अगर कुछ करना है तो या कोई ख्वाब देखा है उसको नहीं टालें। रिश्तों की कदर करें, आज ही वो काम कर डालें जो कल पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं। जिंदगी की ब्यूटी भी यही है और जिंदगी की ट्रेजेडी भी यही है कि आपको ना जिंदगी के पैदाइश का पता है ना आपको डेथ का पता है। सो जो पता ये है कि कुछ कर सकते हैं, ये मेन चीज अल्लाह ने देकर भेज दिया है, भगवान में जो भी आप कहें ये काबिलियत देके भेज दिया है, बाकी जो मेन चीज है वो उसके अपने हाथ में।
0: Is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: सो जी, लाइका रेडियो पे आज आपको गोल्ड रेट जो मैं आपको बता रही हूँ 97.92 है, और ये 1 ग्राम का रेट है।
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com। ये है लाइका रेडियो।
1: यहाँ मैं आपको एक पैगाम है जो देना चाहती हूँ, और वैक्सीन से मुतालिक ये पैगाम है। सो NHS की जानिब से पैंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामेईन के लिए ये मैसेज है, बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ़ फराहम करती हैं, और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से जायद जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की मुतअद्दी संगीन बीमारी, अस्पताल में दाखिले और बाज़ोकात जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है। खसरा और काली खांसी जैसी बीमारी हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती है। अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं, और रिकॉर्ड से वाजे है कि इन वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाए। अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने GP से राबता करें ताकि वो वैक्सीन مکمل کی جا سکے. کیا آپ کے بچے کی تمام حفاظتی ویکسینز بر وقت مکمل ہے؟ یہ جاننے کے لیے اپنے بچے کی ریڈ بک چیک کریں یا اپنے جی پی سرجری سے رابطہ کریں. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/childhood-vaccinations.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Markets, Europe's largest arena, Co-op Live, on Saturday the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: کڈل سے لے کر ہاسپٹل تک, سکول رن سے لے کر ایمبولینس کی سائرن تک, بیبیز, چھوٹے بچے اور ٹینز میں میزلز, میننجائٹس اور نیومونیا جیسی بیماریاں بہت سیریس ہو سکتی ہیں اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اپنے بچے کو ویکسینز لگوانا انہیں صحت مند اور محفوظ رکھنے کا سیف طریقہ ہے. بچوں کے لیے NHS ویکسینز اویلیبل ہیں. NHS GM چائلڈ ویکس سرچ کریں یا اپنے جی پی پریکٹس سے رابطہ کریں.
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest use it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
2: Royale Festival CIC presents,
10: in association with Leica Radio, Greater Manchester,
2: Bradford City Mela 2026.
10: Sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
2: This summer, Bradford comes alive with music, culture, food and full family entertainment at City Park and Centenary Square, bringing a Mela back after 13 years.
10: Catch live performances from Origin, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Saika, and many more artists to be announced.
2: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
12: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Magazine Show with Rabina Khan. Leica Radio.
1: Leica Radio. अभी आपने जो गीत सुना है वो रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी से था, 2012 की ये फिल्म थी, इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था अनुराग बासु ने। आप जिस वक्त गाना सुन रहे थे मेरे जहन में फिल्म चल रही थी, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही आला फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए कि इसमें रणबीर कपूर ने एक डेफ पर्सन का बॉय का काम किया है और जो प्रियंका चोपड़ा है वो ऑटिस्टिक होती हैं। तो किस तरीके से ये फिल्म बनी है और क्या जबरदस्त इस फिल्म में एक्टिंग है, लाजवाब फिल्म है, देखने के लायक है। और अगर कभी ऐसा लगे कि कोई बहुत अच्छी एक्टिंग को आपने देखना है, यानी जिसमें एक्टिंग मेन हो या डायलॉग हो, तो इस फिल्म को देखिए। ग्लैमर हो ना हो, लेकिन ये फिल्म आपको कहीं जाने नहीं देती, आप मुकम्मल देखते हैं। सो आर्टिस्ट ऑफ द वीक रणबीर कपूर, उनकी फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया।
0: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So, India money send करना चाहते हैं तो आज आपको Indian rupees मिलेंगे 127.56 £1 के exchange में। And please don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. T's and C's apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with

0: Rabina Khan, now every Monday to Thursday at 1 p.m. on Leica Radio Greater Manchester. Leica Radio.
1: Leica Radio Greater Manchester. बहुत ही मुख्तसर गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में, लेकिन मुख्तसर हो या बहुत तवील सॉन्ग हो, मोहम्मद रफी की आवाज़ सुनते ही ऐसा लगता है अब हमारे कानों को बड़ी सुकून, बड़ी तसल्ली मिल गई है, क्योंकि उस तरह का गीत गाना बहुत ही मुश्किल है। सो एनीवे, अगर आप सोच रहे थे कि अभी तक अब क्या बस प्रोग्राम ख़त्म ही होने वाला है, चलो उठ के चलने की तैयारी करें। खैर, अभी तो रिस्क खाने आना है, आपकी तैयारी जो है वो मौकूफ़ ही रहनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब तक प्रोग्राम है तब तक कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती ही रहेगी, जिसकी वजह से आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, काम करते रहे, लेकिन जो आपके कान है वो रेडियो पर ज़रूर होने चाहिए। रेडियो का यही फ़ायदा है, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, मैं आपसे जाते जाते थोड़ी सी गपशप शेयर कर जाऊं। एक तो यह है कि अभी मैं कुछ खबर पढ़ रही थी, वो सलमान खान के हवाले से थी कि उन्होंने बांद्रा में एक अपना जो घर है वो 2,88,00,000 में खरीदा था, अब उन्होंने 3 लाख में, अब क्या आता है मेरे ख्याल स्टैंप ड्यूटी भी उससे ज़्यादा लगती होगी, सो 3 करोड़ और कुछ लाखों में वो घर फरोख्त कर दिया। अब मैं सोच रही थी ऐसी खबरें क्या ये फीलिंग होती है जस्ट कि भाई इसमें इससे किसी को क्या फ़ायदा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैं तजस्सुस के मारे पूरी खबर पढ़ी और मुझे सिर्फ इतना ही पता चल सका कि वो ये बिजनेस करते हैं ना, यानी जहाँ पर कोई जाहिर है कि अप्रिशिएट होती है उसकी प्राइस, तो वो वहाँ पर बेच के कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। ये तो होता ही है जब इंसान के पास एक से ज़्यादा बड़े घरों और किसी एक घर से उसकी ख़ास एसोसिएशन ना हो, वो घर जो आपका अपना होता है और जिसको आप बेचना ही नहीं चाहते, तो उसके ऊपर अगर कितनी भी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो भी जाती है तो आपका दिल वो पैसों को लेने को मानता नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं? सही बात है ना, कि मतलब दिल की बात होती है, बाजुकत करोड़ों लाखों जो है ना वो मीनिंगलेस होते हैं। चलिए, ये एक बात थी कि ये ऐसी खबरें भी होती हैं, लेकिन इससे ये बात हमने निकाली कि वो घर जो आप जहां से आपकी यादें जुड़ी होती हैं उसमें उसको आप प्रॉफिट पर नहीं बेच सकते। और दूसरी बात, मैंने एक अभी हमारे एक बहुत ही सैयद अहमद आर्टिस्ट हैं जो ड्रामों में काम करते हैं, लिखते भी हैं, उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग हैं वो ड्रामे को AI से भी लिखवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो क्या ही वो ड्रामा हो सकता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगी। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास उस तरह के जज्बात, एहसास या सोसाइटी का कोई तजर्बा तो नहीं है ना, मशीन है तो बिल्कुल ही फजूल होगा, बिल्कुल ही बेकार चीज होगी। तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो और लोग फिर उसको देखें भी। सो एनीवेज, ये कुछ ऐसी खबरें थी आपकी सोचने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा मवाद, कोई मटीरियल दे जाती होती हूँ और मैं भी सोचती रहती हूँ, आप भी सोच लिया कीजिए। पूनम, आपने क्या लिखा है जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और हार्ट भेज दिया है, शुक्रिया जी, हमारी तरफ से भी हार्ट आपको हमने उछाल दिया है। और आजकल के दिल देखें आप, ऐसे ही भेज सकते हैं, क्या करें, अभी तो एक फिल्म का नाम था, कितने दिल हैं जो किस किस को दूं। सो एनीवेज, ये इमोजीज वाले दिल हैं और ये इजहार होता है कि ये चीज़ हमें पसंद आई है, तो इसको इसी तरह ले लेना चाहिए। और कामरान, आपका मैसेज है, आपको भी गीत लाजमी तौर पे अच्छे लगे होंगे। बहरहाल, मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपके साथ मैं छोड़े जाऊंगी। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी मंडे को, लेकिन उससे पहले सैटरडे में आर्नडेल सेंटर में एक हम शॉप की ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, वहां हम मिलेंगे आपसे। सो खुदा हाफिज, बाय फॉर नाउ।
0: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।

0: गोलगप्पियां दा पानी।
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यूनिंग किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 30th of July थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे आप और हम साथ में यहीं पे। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारी हमारी मित्र मंडली आ गई है, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रही है। तो मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स, जी हाँ भाई साहब, आप दीदी आप भी चलिए आइए, हाय हेलो करके हमें बताइए तो सही कि आपने ट्यून इन किया है। पूरी दुनिया जहाँ में जहाँ पे भी आप हमें सुन रहे हैं, इतना प्यारा सा एक व्हाट्सएप नंबर है केवल और केवल आप लोगों के लिए कि आइए अपनी हाजिरी लगवाइए। तो सवाल पूछेगी अश्विनी, बिल्कुल पूछेगी, और कोई थियरी बिल्कुल। थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे सेकंड आवर में, गजलिया कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली और यादों की बारात में बहुत ही प्यारा गीत। तो तीन घंटे में आपको पता है कि क्या स्ट्रक्चर चलता है इस शो में, एंड वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि आया कल तो फैंटास्टिक फ्राइडे। सवाल क्या है, सवाल जवाब क्या है भाई सवाल? ओके, तो सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ? ये सवाल है मेरा, सोलो ट्रिप या फैमिली के साथ, इसका आंसर मुझे दीजिए। एंड थ्योरी पे बात करेंगे कुछ ही देर में, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत अभिनेत्री फिल्म से। नेक्स्ट
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 55 पैसे। एंड साथ में जरा एक काम करिएगा कि जब भी आप एक्सचेंज करवा रहे हैं तो इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI YONO मोबाइल ऐप पे कर लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: So much.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:22, 30th of July, यानी बस महीना खत्म, नया महीना, नई एक्सपेक्टेशंस, नई मेहनत, नया जोश, तो नएपन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। एंड जनरली इस टाइम पे मैं आप सबको कोई ना कोई लाइफ थियरी जरूर बताती हूँ। आज बात करेंगे द अम्ब्रेला थियरी के बारे में। तो एक लड़की अपना छाता लेके निकली, अपना अम्ब्रेला लेके निकली, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अब वो छाते के साथ में एक कैफे में घुस गई। बारिश से उस छाते ने उस लड़की को काफी देर बचाया। अब जी कैफे के अंदर जब ये चली गई, फिर भी इसका छाता खुला हुआ था, इसने छाते को बंद नहीं किया था। अब दरवाजे से एंटर की, फिर और एक दूसरा दरवाजा था, तो एंटर करने में इसको तकलीफ हुई। ऊपर लाइट्स लगे थे, वो कैसे तो बचते बचाते उन कुर्सियों के बीच से अपने छाते को संभालते हुए, ऊपर लाइट्स से छाते को बचाते हुए चलने लगे। कहती क्या ये कितना छोटा रूम है, कैसे लोग हैं यहाँ पे, इन्हें समझता नहीं कि और ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। और कुछ देर बाद वहां का एक वेटर आया, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप अभी भी ये छाता लेके इस कैफे के अंदर चल रही हैं। तो देन उस लड़की के ध्यान में आया, उसने कहा ओहो क्या बात है, मैंने तो अभी तक छाता बंद ही नहीं किया था। उन्होंने छाता बंद किया, आराम से टेबल पे बैठी और अपनी कॉफी पीते रही। अब छाते का और हमारी लाइफ थियरी का क्या संबंध है, जरा बताओ अश्विनी। तो ऐसा है कि बचपन से हम सभी जो है कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म सीख जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखने के लिए, एंड अपने ईगो को मसाज करते हुए हम बड़े होते जाते हैं। धीरे धीरे धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी में वो एक डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे वो लड़की उस बारिश से खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी छाता लेके, ऐसे ही हम ह्यूमंस भी करते हैं। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इतने मशगूल हो जाते हैं और इतने तत्पर भी रहते हैं एट टाइम्स कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। इस एक डिफेंस मैकेनिज्म में इंसान जो है हर दूसरे इंसान को एक ही तरीके से नापता तोलता है। अब कई बार जिंदगी में बहुत ही बहुत खूबसूरत लोग आते हैं, बेहद खूबसूरत लोग जिनका स्वभाव भी बड़ा प्यारा होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करने में वो भूल जाते हैं कि सब इंसान जिनसे वो मिल रहे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। तो अपना ईगो मसाज करने के लिए या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे जिस तरीके से वो दूसरों से बात करते हैं, एंड मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी हूं, ये चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उस लड़की ने छाता बंद किया और रिलैक्स होकर कॉफी पीती रही, ये हम ह्यूमंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी अपने अंदर का ये डिफेंस मैकेनिज्म बंद करके कहीं कोने में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेहद खूबसूरत लोग आपके लाइफ में आपका साथ दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपके साथ उस पूरी जर्नी पे बहुत खूबसूरती से चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके इस मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी हूं, वो दूर हो जाए। कब अम्ब्रेला बंद करना है और आराम से बैठ के कॉफी पीनी है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि लाइफ है आपकी, अम्ब्रेला थ्योरी है आपकी। कैसी लगी थ्योरी जरूर बताइएगा।
1: This is Ash Winnie on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
3: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carry, Greece and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट

0: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.7 इंडियन रुपी, 374.2 पाकिस्तानी रुपी, 452.56 श्रीलंकन रुपी, 166.43 बांग्लादेशी टाका, 88.08 अफगान अफगानी, 174.29 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.58 मॉरिशियन रुपी.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at 98 pounds and 01 pence per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
1: मिलाने के घड़ियाल देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुहाग फिल्म से सुनाया आप सभी को 18 बरस की. एंड उसके पहले भी हमने आपको बहुत ही बढ़िया गीत सुनाया था नया दौर फिल्म से. स्पेशली उसमें वो टांगे की टांगा जो यूज किया ना, मतलब घोड़े के टप टप टप टप की आवाज, वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. एंड स्टूडियो का फायदा क्या है कि यहाँ पे कितना भी वॉल्यूम बढ़ाओ कोई आके डांटता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है. वी रियली एंजॉय इट. जी तो आप सबको अम्ब्रेला थ्योरी बहुत पसंद आई. ईगो को कब कहाँ लपेट के रखना है ये समझ में आया. तो जिंदगी देखिए, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी ना बहुत खूबसूरत है, ना जाने क्यों हम ईगो के चलते ना उसे अनवांटेडली कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ, मतलब इस आवर का आखिरी ट्रैक, अधिकार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में. नेक्स्ट आवर के लिए तैयार रहिएगा बिकॉज 8 o'clock to 9 o'clock हमेशा स्पेशल बन जाता है. आप सभी का साथ इतना मिलता है. अच्छा थ्रिलिंग थर्सडे है तो पोयम सुनेंगे, बताइए जितने यहां आएंगे उस हिसाब से पोयम आएगी. सो अब लास्ट ट्रैक एंड यही ट्रैक हमें ले चलेगा 8 o'clock की न्यूज की तरफ. थ्रिलिंग थर्सडे बिल्कुल चल रहा है यहीं पे आपके अपने लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर पे. शोज के बारे में आप लोगों के फीडबैक आते रहते हैं एवरी गाने के बाद में. यकीन मनी जब आप लोग आह उह उफ वाले जब फीडबैक भेजते ना तो मैं भी अपनी क्या बात है.
0: This is Ashwini on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Badhiya service se mala mal travel aur bachat karane mein bemisal travel.
8: You mean soft all travel?
7: Yes, desh videsh mein dur dur tak mashhoor.
8: Ek baar aazmaiye zarur soft all travel.
7: Saaton din kisi bhi waqt phone milaiye aur chahe ghar par ticket deliver karaiye.
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
9: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
10: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav. We'll see you there.
11: Ace Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Bradford City Mela with Leica Radio Network. This weekend at City Park and Centenary Square, Bradford. Free entry.
12: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F. Face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
13: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
14: Four beers, please, garçon!
13: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
15: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
16: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
0: This is Leica Radio, Greater Manchester.
17: The Evening Show with Ashwini.
0: Leica Radio Network, now the home of Leica Radio, Greater Manchester.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. 8:15 पहले दो गीत, द फर्स्ट वन वॉज कुमार सानू की आवाज में सोचेंगे तुम्हें प्यार. आई लव दिस ट्रैक, दीवाना फिल्म से सुनाया. 90s वाले बच्चे हैं ना हम तो भैया ऐसे खुश हो जाते हैं. 90s वालों खुश हुए कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ बताओ मुझे, लिखो मैसेज बताओ. एंड अलग अलग विच वॉज रिलीज इन 1985, उस फिल्म से कागज कलम, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में. तो जी हाँ, मैंने आप सबसे पूछा कि क्या मेरी लिखी हुई कोई पोयम सुनना चाहेंगे, तो आप सबने कहा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सुनाएंगे. लेकिन उसके पहले बात हो जाए जरा ट्रिप्स के बारे में. मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ जाना पसंद करेंगे. अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं ये कहूंगी कि मुझे सोलो ट्रिप जाना पसंद है. फैमिली के साथ में डेफिनेटली हम लोग अपने अपने जो बेटर हाफ्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, इनके साथ तो हम लोग जाते ही हैं, फ्रेंड्स के साथ तो जाते हैं. लेकिन सोलो ट्रिप क्यों करनी चाहिए, अनजानों के साथ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप एक्चुअली कैसे हो ये आपको भी तब समझ में आता है जब आप बिल्कुल अनजानों के साथ अकेले अपने आप के साथ घूमते हो. यानी कि आप सोलो ट्रिप जा रहे थे बस में, जो भी टूर लेते हैं, जो भी ट्रेन प्लेन लेते हैं, जो भी फ्लाइट्स लेते हैं, बाकी के तो लोग स्ट्रेंजर्स ही है ना. उस समय आपका अपना आप खुद होते हो. लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हम अपने आप से ही तो भागते हैं, अपने आप से मिलना नहीं चाहते. तभी तो जिंदगी में बहुत सारी एस्केप्स हमने लगा रखी है. 10 मिनट भी हमें शांति से बैठना नहीं है, ना हेडफोन्स, ना टीवी, ना रेडियो, ना म्यूजिक. कभी दिए खुद को वो 10 मिनट? देखिए देखिए, मिलिए अपने आप से, बहुत प्यारे इंसान हैं आप. देखो यार, टाइम देखिए जरा, हाँ अपनी खूबियां देखो, ईगो नहीं खूबियां देखो. I actually go for a solo trip every year. वो बात अलग है कि मेरे destinations जान पहचान वाले ही होते हैं, लेकिन अकेले जाने का मजा एक तो ये होता है कि सच में मुझे मैं ही समझ में आ जाती हूँ. एंड एवरी ईयर एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू इन मी एंड आई एम जेन्युइनली लविंग दैट. चाहिएगा सोलो ट्रिप करिएगा, स्ट्रेंजर्स से बातें करिएगा, क्योंकि कई बार हमारे खून के जो रिश्ते होते हैं ना, उनसे भी बेहद करीब लोग हमें ऐसे सफर में मिल जाते हैं. और कई बार ये जो इंसान मिलते हैं ना, वो आपके हम सफर भी होते हैं. नॉट रोमांटिक एंगल इज इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम इन लाइफ यार, सोलमेट्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, कितने सारे और भी रिश्ते हैं. आ जाके हम लोग क्या करते हैं कि बस वो एक लव बोला, यानी मतलब लवर्स हैं, यानी रोमांटिक एंगल. ना ना ना, रखो ना यार, कुछ रिश्ते रखो, प्योर रखो, पायस्ड रखो, बहुत सुंदर होते हैं ऐसे रिश्ते. एंड आई एम श्योर आप सबके लाइफ में ऐसे रिश्ते होंगे. ध्यान से देखिएगा, पोयम सुनाऊंगी बस कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले आरडी बर्मन की आवाज में थोड़ा मस्ती भरा गीत.
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 55 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: मजा आया आरडी बर्मन की आवाज में शोले, विच वॉज रिलीज इन 1975, एंड शोले का ही तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है हमारे शो पे। कितना पसंद करते हो आप लोग इस म्यूजिक को, हमेशा हर रोज हर आवर में किसी ना किसी का मैसेज होता है दैट शोले वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। मुझे पता था आप लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए तो फिर मैंने ये चूज किया था, स्पेशली दिस पार्ट, है ना। ओके, सो आज मैं आपको जो पोयम सुनाने वाली हूँ ये ना हमारे उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल वाले बचपन के जो दोस्त है ना, कुछ भी बोलो इनकी एक अलग ही जगह रहती है हमारे जहन में, बड़े स्पेशल होते हैं, कमी नहीं होते हैं ये दोस्त, लेकिन बड़े स्पेशल होते हैं क्योंकि उनके साथ आपके वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो शायद आप अपने घर वालों के साथ में नहीं शेयर कर पाते। चलिए ले चलती हूँ आपको। तो इस कविता का शीर्षक है, पोयम का शीर्षक है चलो ना। चलो ना कहीं घूम आते हैं, चलो ना कहीं घूम आते हैं, गलियों में जो चीजें देखी थी ना उन्हें साथ लेके आते हैं। ए यार आओ ना, चलो उन गलियों में वापस घूम आते हैं। हम सबकी साइकिल की वो सवारी, हंसी मजाक कुछ छेड़छाड़, वो गलियों में गूंजती बातें वापस ले आते हैं ना। याद है ना गलियों में कैसे कोने में खड़े होके दो तीन लोग तो गपियाते होंगे, है ना। वो गलियों में गूंजती बातें वापस ले आते हैं, चलो ना उन गलियों में घूम आते हैं। अब चाहे लड़के हो या लड़कियां, ओके, सो हम सब की सीक्रेट्स, किसी की गॉसिप जो एक ठेले पे खड़े होके चाय पे चर्चाते थे, चलो ना एक एक चाय साथ पी आते हैं। आओ ना यार उन गलियों में वापस घूम आते हैं। अपनी ही धुन में मस्ताएं तिरछी आंखों से जो उन्हें देख आते थे, इन्फैचुएशन की बात चल रही है यहाँ पे, अपनी ही धुंध में मस्ताए तिरछी आंखों से जो उन्हें देख आते थे, मन ही मन मुस्काए कुछ इशारे दे और कुछ इशारे ले आते थे, चलना यार उन गलियों में वापस घूम आते हैं। बचपन था या बचपना, बचपन था या बचपना, इस जद्दोजहद में नहीं पड़ते हैं, चलना साथ घूम आते हैं। अपने शहर की उन यादों को खूब जी आते हैं, आओ ना यार चलो ना, कितना भाव खा रहे हो। कोई गैदरिंग करके ये सारी यादें ताजा कराते हैं, चलो ना कहीं घूम आते हैं। आई एम श्योर आप ये पोयम सुनते सुनते आप उन सारे ही दोस्तों को अभी याद कर रहे होंगे जिनके साथ में ऐसे पल आपने बिताए हैं, और अगर उनसे कांटेक्ट में नहीं है तो उठाना फोन कल सुबह, अगर एशियन कंट्रीज से आप हो जहां पे अभी रात हो चुकी है, एक सीधे मैसेज करो एंड फोन घुमा के उनसे बात करो। दोस्त जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होती है दोस्ती की, क्योंकि हम उन इंसानों को उन दोस्तों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो है, बदलने की कोशिश नहीं करते। बताइए पोयम कैसी लगी।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. This is Ash Winnie on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: चांथल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
6: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: चांथल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल चांथल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
1: Safo Travel, auto protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is

0: Emotion of the day. Feel Good Track was brought to you by LycaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Lyca Radio app and website on LycaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Lyca Radio.
2: मिला लेंगे खड़िया एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है 8:37. मैंने कहा था ना 35 के आगे जरा मैं थोड़ी गड़बड़ा जाती हूँ. हाँ तो 45, 55, 56 कुछ कुछ आता है कुछ कुछ नहीं आता. एंड इट्स ओके टू कन्फेस एट टाइम्स कि हमको चीजें नहीं आती तो नहीं आती. ओके आशा भोसले की मदहोश कर देने वाली आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स आप सबको सुनाया इजाजत. एंड दैट वॉज इमोशन ऑफ द डे थ्रिलिंग थर्सडे में आज आप सबको सुनाया गीत. आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कह रहे हैं क्या अश्विनी तुम हमको वापस स्कूल डेज में ले गई यार उन यारों के पास उन सहेलियों के पास. यही तो इंटेंशन है ना इस शो का. सारी इमोशंस खुश रहते हो ना आप शो सुन के. कभी कभी जो बिछड़े लोग हैं उनको भी याद करके और ज्यादा खुश हो जाइए जी. तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस अगर हम कर ले ना अपनी सोच में भी तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी. इस बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले बाकी की और भी चीजें हैं शो में.
0: ये है लाइका रेडियो. इट्स समर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क.
1: ये है
0: लाइका रेडियो.
3: मैं हूं इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
2: रीइन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एपिसोड नंबर 26 देख सकते हैं सुन सकते हैं. दीप राजा ने सवाल जवाब किए हैं मीनल सामरी से फ्रॉम समारिया ग्लोबल फाइनेंस से वो आई थी. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब एमेजन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी ऑन लाइका रेडियो.
4: Are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. This is Lyca Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@lycaradio.com. That's info@lycaradio.com. We would love to hear from you to make Lyca Radio, Greater Manchester a better station for you. Lyca Radio, Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@lycaradio.com. Advertise here now. Call 0161 250 8222 or email sales@lycaradio.com. A new Asian sound for the northwest of England.
1: Lyca Radio.
0: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio.
11: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
12: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
13: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, all the lenders, all the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.69 इंडियन रुपी, 374.18 पाकिस्तानी रुपी, 452.43 श्रीलंकन रुपी, 166.44 बांग्लादेशी टाका, 88.12 अफगान अफगानी, 174.28 केनियन शिलिंग, 1.34 US डॉलर्स.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cashback when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £98.19 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 48 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. अब सेकेंड आवर भी खत्म होने आ रहा है. इस आवर का गीत जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में. दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते और प्यार में मरते जाएंगे. काम भी कर लो कुछ, है ना. ओके, तो एक्चुअली आप लोगों के मैसेजेस आते हैं. आप सभी ना मुझे मैसेजेस के साथ में ना अच्छा खासा बिजी रखते हैं. मतलब यहाँ पे चार स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे गाने भी प्ले हो रहे हैं, कुछ रीड्स भी कर रहे हैं, फिर आपको बाकी चीजें बता रहे हैं और आप लोगों के मैसेजेस को हम जो है रिप्लाई कर रहे हैं. बड़ा मजा आता है क्योंकि काफी इंटरैक्टिव होते हैं आप लोगों के साथ में मैसेजेस हमारे. एंड किस तरीके से शो जा रहा है आप लोग उसके बारे में भी फीडबैक देते रहते हैं. तो ये जो इस अब जो गाना हमने सुनाया था आप सभी को, जब प्यार किसी से होता है, लता मंगेशकर की आवाज में, उसमें एक लाइन है कि हर बात पे आहे भरते हो. नाउ दिस लाइन इज स्पेशली फॉर पेट पेरेंट्स जिनके यहाँ डॉग्स हैं. आई एम अ पेट पेरेंट, मेरे यहाँ पे माय डॉग पीचेस, ब्लैक लैब्राडोर, एंड शी इज एक भरो आहे. एंड आई एम लाइक यार बेटा तू यहाँ से सोफे पे बैठ, बेड पे बैठ, मतलब यू जस्ट बैठना उठना घूमना फिरना, नो रेंट नो काम धाम, और फिर भी आहे कैसे भरते हैं मुझे समझ में नहीं आता है. एंड व्हेन आई डू ऑल दिस बड़बड़ विद माय डॉग शी विल जस्ट गिव मी दोज लुक्स कि हो गया तुम्हारा बात करके. एंड आई एम लाइक हो गया. सो आई एम श्योर पेट पेरेंट्स जितने भी हैं जरा प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कि आप लोग भी अपने पेट्स के साथ बातें करते हैं. तो जो लोग अपने पेट्स के साथ में बातें करते हैं बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं. जैसे किसी ह्यूमन के साथ में आप चीजें शेयर करते हैं ना, अब वो जानवर आपसे बात तो नहीं करता लेकिन आप जिस तरीके से उस प्यारे से बच्चे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, रिसर्च की गई है कि वो एनिमल आपसे और ज्यादा जुड़ते जाते हैं एंड अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट होता है इनका आपके लाइफ में.
0: योर नंबर वन चॉइस इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क. This is Ashwini on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
0: Herald
3: world. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
8: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
9: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid? Fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
10: Okay, help's on its way.
11: Grab my hand!
12: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
14: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk.
15: The Evening Show with Ashwini.
16: Leica Radio.
14: Where Bollywood comes first.

0: Ashwini, brightening up your weeknights.
1: Welcome. This is the third and the आखिरी hour of the evening show with Ashwini. इस hour का आगाज हमने किया था कुछ कुछ होता है के title track से अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में refreshing track. मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, किशोर कुमार की आवाज में राजपूत फिल्म से सुना है आप सभी को ये गीत. अच्छा, एंड में जो ट्रक ट्रक ट्रक ट्रक आवाज आ रहा था, वाज दैट द फुटस्टेप्स ऑफ घोड़ा अगेन? हाँ, वो टांगे की टांगे पे थे, घोड़े पे क्या थे? एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर ये वाला गाना, सो बिल्कुल बताइएगा जरूर. ओके, सो नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं अमिताभ बच्चन एंड आशा भोसले की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर से.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 55 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. T's and C's apply.

0: 9:09 अमिताभ बच्चन और आशा भोसले की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर से सुनाया आप सभी को ये गीत। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो आज है 30th of July। किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी को नौकरी लगी होगी, किसी की नौकरी का लास्ट डे होगा, किसी के लिए रोज का ही दिन होगा, लेकिन आज और भी कई चीजें मनाई जाती हैं। तो आज मनाया जाता है नेशनल चीज केक डे, नेशनल चिली डॉग डे, नेशनल इंटर्न डे, नेशनल विसल ब्लोअर डे, नेशनल फादर इन लॉ डे, शेयर अ हग डे यानी झप्पी वाला दिन, एंड दिस पेपर बैक बुक डे। सो आई एम क्वाइट एन ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू बुक्स। पेपर बैक बुक्स मुझे अच्छी लगती है, स्पेशली जब भी कोई नई बुक आप लाते हैं, कोई नई पुस्तक घर पे लाते हैं, जब उस बुक को आप खोलते हैं तो जो पेपर एंड डाई का जो एक मिश्रित यानी मिक्स्ड जो एक फ्रेग्रेंस कह लें, अरोमा कह लें, आई डोंट नो, अभी पेपर बैक बुक का जो भी स्मेल इज बैड, दैट इज नॉट स्मेल, दैट इज समथिंग गुड, यू नो। नई बुक जब भी हम लाते हैं तो उसका एक अलग फ्रेग्रेंस या जो भी है, यू गॉट द पॉइंट राइट, मैं क्या कह रही हूँ। सो बुक पढ़ते बैठो वीकेंड पे, चाय कॉफी का मग हाथ में, एंड वो डेडिकेटेड कपल ऑफ आवर्स, दैट्स सो ब्यूटिफुल, आराम से बैठे बिल्कुल अपनी अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कौन रीडिंग करता है अभी फिलहाल, कौन कौन सी बुक रीड कर रहा है, जरा मुझे लिख के भेजिए ना। अगला गीत जो आपको सुनाएंगे येसुदास की आवाज में, लहू के दो रंग, उस फिल्म से लिया है जिद ना करो, अगेन अ लवली ट्रैक येसुदास की आवाज में। येसुदास इज आर्टिस्ट ऑफ द वीक। सो अब धीरे धीरे आप और हम बढ़ रहे हैं आगे, एंड गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली जरूर बताइएगा। अच्छा, जो लाइव थियरीज आपको सुनाती हूँ उसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है ऑन माय इंस्टाग्राम रेडियो वाली अश्विनी, आप जरूर वहाँ चेक कर सकते हैं।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ash Winnie on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
7: Are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: Hi, Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
11: Two devastating earthquakes have hit Venezuela, and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate. Thank you.
12: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par, DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold, aur online suno laikagold.com pe.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester.
1: Leica Radio.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: This is Leica Radio, Greater Manchester. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.64 इंडियन रुपी, 374.09 पाकिस्तानी रुपी, 452.4 श्रीलंकन रुपी, 166.3 बांग्लादेशी टाका, 87.98 अफगान अफगानी, 174.21 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.56 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: Gold is currently trading at £98.28 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां आखिरी बार और देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है LIKA गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड LIKA रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा. LIKA रेडियो 90s, LIKA रेडियो पंजाबी, LIKA गोल्ड 2. सुबह सवेरे आएगी हमारी काजल, उनका साथ दीजिएगा. एंड अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये गीत आप लोगों के लिए मैंने डेडिकेट किया था कि बोल मेरे साथियां कितना मुझसे प्यार है. दना दना आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं. सच मुझे थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू इन ग्रेटिट्यूड कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं और आपका प्यार मैसेजेस के द्वारा मुझे मिलते रहता है. कल है फैंटास्टिक फ्राइडे, तो तैयार रहिएगा और बहुत डांस मस्ती होगी. खाना पीना करके अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए पहले ही तैयार रहिएगा, फिर बाद में मत कहना कि अश्विनी तुमने कहा नहीं था. ओके, बहुत से लिसनर्स फिर मुझे कहते हैं काश हम पहले खाना वाना खा के बैठ जाते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती. देखो मैंने अभी बता दिया, याद रखना. गजल या कवाली में क्या सुनाने वाली, तो गजल सुना रही हूँ जगजीत सिंह की आवाज में. एंड आखिरी ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी लता मंगेशकर एंड शब्बीर कुमार की आवाज में बेताब फिल्म से जब हम जवां होंगे. सो आप सबके लिए ये दो गीत मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ. हमेशा की तरह यही कहूंगी कि लाइफ बड़ी सुंदर है, उसे बर्बाद ना करें. प्यार दो प्यार लो, और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. सो ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.
3: ये है
2: LIKA रेडियो.
4: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल.
0: गजल

0: Laika Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
0: Ye hai Laika Gold

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी।
2: Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LaikaRadio.com or the Laika Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
3: This is Laika Radio.

0: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Did you know you can advertise on this station, Like a Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Like a Radio Greater London and Like a Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250

0: Like our radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
6: The sounds of love in Manchester. Leica Radio.